और यूसुफ भट्ट ने कॉल किया है परवीन भट्ट बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी और यूसुफ भट्ट ने कहा है ऐसा लग रहा है ये गाने सुनकर के सबा सबा हो ही नहीं रहा बिल्कुल सबा सबा बिल्कुल पीसफुल होगा होगा अमीर अली राणा ने कहा है कि देखो एक बॉस ऑफिस आता है कि पूछता है कि व्हाई हैज जॉन नॉट कम टू वर्क टुडे तो जो आदमी है एम्प्लॉय वो कहता है ही इज इन हॉस्पिटल तो बॉस कहता है बट आई सॉ हिम लास्ट नाइट डांसिंग विद सम प्रिटी गर्ल तो वो आदमी कहता है यस हिज वाइफ सॉ हिम टू तूने तो देखा था ना लड़की के साथ डांस करते हुए बीवी ने भी देख लिया है कमाल का जोक अमीर अली राणा और समय मुझे बताएं कि ये कहाँ हुआ है आई मीन क्या हुआ है 59 देशों से लोगों को पकड़ा गया है या एक ही ऑपरेशन एक कार्रवाई में 59 कंट्रीज के लोग पकड़े गए हैं क्रैक डाउन है ये ग्लोबल 1,000 पीपल गिरफ्तार अरेस्टेड एक पूरा नेटवर्क तोड़ दिया गया है करीब 2,000 लोग इसमें पीड़ित थे उनको रिहाई मिल गई सर मुझे बताइएगा कि ये टोला जो कोई गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ 1,000 अभी तो और भी होंगे क्योंकि सारी दुनिया में ये स्प्रेड था क्या करते थे ये कोई जुर्म कर रहे थे क्राइम है ये क्रिमिनल नेटवर्क था पर क्या था कैसा क्राइम है ये क्या कर रहे थे 07011061106 पर बताएं

0: अगेन अश्विन, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स जो अपने जमाने में धूम मचा कर गया.
1: हेलो
0: जी अश्विन, आपको आवाज आ रही है?
1: करण जी, ये ब्लॉकबस्टर फिल्म थी
0: सूरज.
1: हेलो,
0: कौन सी फिल्म थी?
1: सूरज
0: जी.
1: या स्क्रीन पे राजेंद्र कुमार गा रहे हैं.
0: राइट, व्हाट अ सॉन्ग.
1: साथ में थी विजयतिमाला.
0: अच्छा, ओके.
1: और म्यूजिक था शंकर जय किशन का, प्रवीण जी. और दिस वाज राजेंद्र कुमार लास्ट सिल्वर जुबिली फिल्म.
0: अच्छा, सूरज.
1: आफ्टर दैट
0: वो सिल्वर टच चले गया. बिल्कुल हर स्कूल के फंक्शन में, हर सड़क के किनारे, जहाँ भी.
1: इट्स कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम मोहम्मद रफी.
0: यस, बिल्कुल बिल्कुल सही.
1: तो इसलिए मैंने आपको फोन किया कि ये मोहम्मद रफी को सलाम करते हैं हम और याद करते हैं.
0: वंडरफुल, थैंक यू सो मच अश्विन. समीन, इतना पॉपुलर गाना, माय गॉड. अब किसके पास जाना है? हमने एक तो दो ही लिसनर्स थे जिन्होंने हमें सही जवाब दिया था, और आए हैं यहाँ पर एक और सही जवाब है, और वो है कल्पना का. कल्पना, थैंक यू. और किसी और ने, रसिला शाह आई हैं. बिल्कुल, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है, रसिला शाह ने, न्यूज़पेपर से लेकर. खतीजा, बेस्ट प्रोग्राम एवर. थैंक यू खतीजा, और आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है. मंजुला विश्वकर्मा, सुनते हैं.
2: जी, जो 1000 लोगों को पकड़ा गया है, ये बहुत बड़ा कोई गैंग है जो मानव तस्करी करता था, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाता था, भीख मांगने को मजबूर करता था, आदि आदि बहुत सारे ये चीजें हैं जो ये गैंग करता था.
0: सर, जो ये मंजुला विश्वकर्मा बताकर गई हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझ नहीं आते. अभी अभी तो हम ले रहे हैं आंसर्स, लेकिन कब ये इसका खात्मा होगा? होगा भी कि नहीं होगा?
3: East FM, Kenya's premier Asian mix. These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
4: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit a human resource business partner, commercial, bachelor's degree in human resource management, business administration, industrial psychology, or a related field, and a minimum of 5 to 7 years of progressive experience in human resource, with at least 2 to 3 years in a HR business partner, HR manager, or equivalent strategic HR role required. A postgraduate qualification is an added advantage, and a professional HR certification such as CHRP or HRCI is highly desirable. Visit myjobsinkenya.com to apply.
3: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. MyJobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews. East FM. East FM. No one plays more of the beats you dance to but East FM.
5: East FM,
3: Kenya's premier Asian mix.
5: Asian mix.

0: उसमें एक मुहावरा भी है लेकिन अभी वक्त नहीं है, जब मौका मिलता है तो ज़रूर वो आपसे पूछूंगी अंग्रेजी में। लेकिन पहले रितु गुप्ता से बात हो।
1: प्रवीण जी नमस्कार, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना प्रवीण जी, पता क्यों ये एक का काम नहीं है, ये ग्रुप है प्रवीण जी, ये बड़े ग्रुप में ये लोग पता क्या करते हैं, लोगों के मोबाइल फोन चोरी करते हैं और चोरी करवाते भी हैं, और चोरी के फोन के जो लॉक होते हैं ना उनको ना ये जो फ्लैश होता है ना उसमें जहाँ रीसेट हम जहाँ करते हैं उनको ना चेंज कर देते हैं, जहाँ की उसको हटा देते हैं कि कोई ट्रैक ना किया जा सके, और फोनों को जो काला बाजार में जाके ना बेच भी देते हैं, और ये दूसरे देशों तक भी ये पहुंचाना इनका काम है, फोन के जो पुर्जे होते हैं ना ये भी अलग अलग देशों में जाके बेच देते हैं, तो इसलिए पुलिस वालों ने इसको ना क्रिमिनल नेटवर्क का काम दिया है। ये लोग बड़े चालाक होते हैं कि फोन में, हमारा भी कई बार फोन चोरी हुआ है, चाहे हम लोग रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं लेकिन ये उससे पहले ही फटाफट प्रवीण जी ये वो सिम ही निकाल के फेंक देते हैं, उसके जो आपको पता ना एप्पल फोन कितना कीमती होता है उसके ये फटाफट पुर्जे निकाल लेते हैं। ऋतु गुप्ता
0: मोबाइल फोन चोरी की बात नहीं कर रहे, ये तो इस कदर दुनिया में फैला हुआ है ये ग्लोबल नेटवर्क और ये क्या घिनौना काम कर रहे हैं उसके बारे में यासर आपने बताया है हमें कि क्या क्या और डिटेल्स दिए हैं, मैं अभी पढ़कर सुनाती हूँ। साथ चलते हैं, व्हाट लॉयल्टी एक्चुअली मीन्स एंड कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था नाज़नीन, कि मैंने कहा कि 1000 लोग एक क्रैक डाउन में पकड़े गए हैं, क्रिमिनल नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है, वो क्या करते थे क्रिमिनल्स, क्या करते थे। ओके, आपने कहा है कि डिफेंडिंग पीपल इन रूम्स दिल नेवर एंटर, दिस इज लॉयल्टी एंड नॉट ब्लाइंड allegiance, not blind allegiance, but protecting reputations from

और समय अब चलते हैं देखते हैं कि ये क्या rest on your laurels yes समय आंसर था rest on your laurels नाज़नीन बिल्कुल करेक्ट आंसर है सोनल मोदा करेक्ट rest on your laurels और मिसेस धनजन ने कहा lazy as a toad वो किसी और का आंसर हो सकता है लेकिन ये है To rest on your laurels. जो आपने करके दिखाना था वो कर दिया है अब आप आराम से बैठे हैं अब कोई नया ख्वाब नहीं चेस

और अब रितु गुप्ता, आपने रेस्ट पर किया काफ़ी ज़्यादा हमें दिए हैं, आपने कहा है रेस्ट कम्स फर्स्ट, रेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन आंसर था रेस्ट ऑन योर लॉरल्स। समय इंग्लिश में लॉरल्स वो जो आपने अचीव किए हैं, वो जो आपने ट्रॉफीज पाई हैं, मेडल्स पाए हैं, ताज पाए हैं, तो रेस्ट ऑन देम, रेस्ट ऑन योर लॉरल्स। और दिनेश शाह, आपने कहा है रेस्ट ऑन योर ग्लोरी, पर एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है रेस्ट ऑन योर लॉरल्स है। और मिसेस धंजल ने तो कह दिया था लेजी एज अ टोड, वैसे आप रखें इस एक्सप्रेशन को संभाल कर, इट्स अ गुड वन। और रूपल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है, गुड वन। रितु गुप्ता, थैंक यू। और साथ में आई हैं कौन, उन्होंने कहा है नलिनी आर्षा, आई कैन नॉट रिजिस्ट टू थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे, अमेजिंग एंटरटेनमेंट, योर वॉइस एंड सॉन्ग चॉइसेस नेवर फेल टू एंटरटेन द ऑडियंस, यू आर द बेस्ट अनाउंसर, कीप अप द बेस्ट वर्क।

श्रीधर इज अ वंडरफुल वंडरफुल आर्टिस्ट और बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो. आई स्पोक टू हिम व्हेन आई डन हिज इंटरव्यू अ लिटिल फ्यू इयर्स अगो, बट इवन अदरवाइज लाइक इवन ऑन सोशल्स व्हेनेवर यू टैग हिम और एनीथिंग ही ऑलवेज शेयर्स द पोस्ट एंड ही हैज नो टू व्हाटएवर अबाउट इट कि चलो नो मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ. ही इज रियली रियली हम्बल एंड अ वंडरफुल वंडरफुल पर्सन. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज वंडरफुल इज ऑल्सो द अगावे अफेयर एंड वंडरिंग व्हाट इट इज ऑल अबाउट. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इट इज. ओके, सो on Saturday 25th July, KICC is hosting one of Nairobi's most exciting premium lifestyle experiences. Now you can expect curated tastings, great music, incredible entertainment, lot of good vibes and unforgettable company all in one spectacular setting. And the best part is tickets are only 1,500 shillings for individuals. For a group of six, you get it only for 5,000 shillings. So those who grabbed also the mystery tickets are, they know that something special is coming their way. Now it's your turn. Okay, get your tickets from ticketyetu.com, the Agave Affair, and book your spot today.

मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता आमा हासला A1 लाइफस्टाइल A1 ऐ मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम क्योंकि बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ हिटरो